न्यायालयेन सम्बन्धिताधिकारिभ्यः वैद्युतक अंकीय साक्ष्याणां संरक्षणमपि निर्देशितम्। मुख्य न्यायाधीशस्य सूर्यकान्तस्य अध्यक्षतायां त्रिन्यायाधीशपीठं प्रदर्शनकाले आरक्षकबलस्य कथितानुचितबलप्रयोगसम्बद्धानां याचनानां श्रवणम् अकरोत्। न्यायपीठेन दिल्ली प्रशासनाय अभिलिखितानां FIR इति प्रकरणानाम् अन्वेषणं निरन्तरं कर्तुम् अनुमतिः प्रदत्ता। तथापि न्यायप्रक्रियायाः प्रवर्तनकाले प्रदर्शनरतानां छात्राणां विरुद्धं किमपि कठोरनिर्णयं न कर्तव्यमिति निर्देशः प्रदत्तः। सर्वोच्चन्यायालयस्य आदेशानुसारं तथा अवैधरीत्या नीट परीक्षापत्र प्रकाशनस्य विरुद्धं प्रदर्शनानां विषये सर्वेषां पक्षाणां मूल्याङ्कनं कृत्वा पश्चिमबङ्गाल प्रशासनेन विरोधप्रदर्शनेषु सम्मिलितानां छात्राणां विरुद्धं किमपि कार्याचरणं न स्वीकर्तुं निश्चितम्। राष्ट्रमंडल क्रीडासु भारतीय भारोत्तोलिका हरजिंदर कौर महिलानां 71 किलोग्राम भारवर्गे रजत पदकं प्राप्तवती। अपरंच भारतीय मुष्टियोद्धा एम जादुमणि सिंहः ग्लास्गो नगरे पुरुषाणां 55 किलोग्राम भारवर्गे प्रागुपांत्य चक्रे मुआले मुएंगो इत्येनं पराजित्य न्यूनातिन्यूनं कांस्य पदकं सुनिश्चितवान्। अनेन असौ उपांत्य चक्रे प्रविष्टवान् इति वार्ताः।

0: और मिलकर परिणाम देने के लिए विभिन्न प्रकार की बाधाओं को दूर करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। प्रधानमंत्री ने नागरिक केंद्रित शासन के महत्व पर बल देते हुए कहा कि भारत की जनता प्रत्येक निर्णय और नीति के केंद्र में रहनी चाहिए। लोकसभा में आज लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 पर फिर से चर्चा शुरू होगी। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कल सदन में विधेयक को विचार और पारित कराने के लिए पेश किया था। ये विधेयक लोक परीक्षाओं में अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति को जब्त करने जैसे कठोर दंड शामिल हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि ये नया कानून देश के छात्रों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता का परिचायक है।
1: 2 महीने के भीतर सारी जांच मुकम्मल की जाएगी और उसके बाद जो भी ट्रायल कोर्ट होगा, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, उसमें ये 3 महीने, यानी जिस दिन वारदात रिपोर्ट हुई है उस दिन से लेकर के आखिरी निर्णय आने तक 5 महीने से ज्यादा अवधि काल नहीं रहा जाएगा।
0: श्री सिंह ने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को भी दोहराता है कि देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस के गौरव गोगोई ने कहा कि सरकार शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं है।
2: ये सरकार शिक्षा विभाग को लेकर गंभीर नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहिए। ये सिर्फ एक दिखावा का बिल है, क्योंकि ये बिल एक संशोधन बिल है।
0: वहीं भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने इस विधेयक को एक क्रांतिकारी कदम बताया। समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने विभिन्न परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने पर चिंता व्यक्त की। विधेयक पर अभी चर्चा पूरी नहीं हुई। पीठासीन अधिकारी संध्या रॉय ने सदन को आज सुबह 11 बजे फिर से शुरू होने तक के लिए स्थगित कर दिया। पश्चिम बंगाल में

सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए और नीट परीक्षा के पेपर लीक से संबंधित विरोध प्रदर्शनों के सभी पहलुओं के मूल्यांकन के बाद राज्य सरकार ने विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने का निर्णय लिया है। भारत समुद्री नाविक उपलब्ध कराने वाला विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश बनकर उभरा है। वैश्विक जहाजरानी उद्योग में भारत ने 3,11,936 समुद्री पेशेवरों का योगदान दिया है। BIMCO, ICS, Seafarer, Workforce रिपोर्ट 2026 के अनुसार अब वैश्विक समुद्री कार्यबल में भारत का 12.16% का हिस्सा है। केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने वैश्विक जहाजरानी मार्गों को प्रभावित कर रहे बढ़ते भू राजनैतिक तनावों के बीच संघर्ष संवेदनशील क्षेत्रों में व्यापारिक जहाजों पर काम करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए सुरक्षा और कल्याणकारी उपायों की समीक्षा की। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तानी सेना द्वारा पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ घातक बल के प्रयोग की खबरों की स्वतंत्र और पारदर्शी जांच की मांग की है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारोत्तोलक हरजिंदर कौर और धावक गुलबीर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किया। वहीं धावक विशाल टीके ने पुरुषों की 400 मीटर स्पर्धा के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: शुरू गरौँ आजको सङ्गीतमय यात्रा। र यात्राको प्रथममा रहेको छ एउटा सुमधुर आधुनिक गीत गायिका सुनिता गजमेरको स्वरमा, जसमा रहेको छ शब्द डाक्टर

0: भावी कार्य योजना की समीक्षा की। लोकसभा में लोक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग की रोकथाम संबंधी संशोधन विधेयक 2026 पर आज फिर चर्चा होगी। दिल्ली सरकार ने प्रत्येक पात्र महिला को 2,500 रुपए प्रतिमाह की आर्थिक सहायता देने के लिए लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना की बर्बर कार्रवाई में पिछले 2 दिनों में मरने वालों की संख्या 30 हुई। ईरान ने पश्चिम एशिया में अमरीकी सेना पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। अमरीका और सऊदी अरब की सेनाओं ने भी संयुक्त रूप से इराक में ईरान समर्थित समूहों के खिलाफ हमले किए। और राष्ट्रमंडल खेलों में गुलवीर सिंह 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। हरजिंदर कौर ने भी भारोत्तोलन में रजत पदक अपने नाम किया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने आवास पर सरकार के सचिवों के साथ दूसरी उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने वित्त और अर्थव्यवस्था, वाणिज्य और उद्योग तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्रों से संबंधित मंत्रालयों और विभागों की भावी कार्यसूची की समीक्षा की। बैठक का मुख्य उद्देश्य विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को गति देना था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: बैठक के दौरान श्री मोदी ने मंत्रालयों और विभागों के बीच एकजुटता की भावना के साथ काम करने का आग्रह किया। नागरिक केंद्रित शासन के महत्व का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की जनता शासन के केंद्र में रहनी चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि प्रत्येक निर्णय और नीति आम नागरिक के हितों और आकांक्षाओं के अनुरूप होना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि भारत बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश कर रहा है, लेकिन स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के विकास को भी समान प्राथमिकता दी जानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने तकनीकी आत्मनिर्भरता और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में घरेलू क्षमताओं के निर्माण के महत्व पर जोर दिया। श्री मोदी ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और नागरिकों के कल्याण से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि देश को नवाचार, विविधीकरण और क्षमता निर्माण में तेजी लाकर ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को हमेशा युवा, गतिशील और दूरदर्शी बने रहना चाहिए और नई चुनौतियों और अवसरों के अनुरूप फुर्ती और नवाचार के साथ लगातार अनुकूलन करना चाहिए। आदित्य प्रताप सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026

0: पर फिर से चर्चा शुरू होगी। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल सदन में विधेयक को विचार और पारित कराने के लिए पेश किया था। यह विधेयक लोक परीक्षाओं में अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति को जब्त करने जैसे कठोर दंड शामिल हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि यह नया कानून देश के छात्रों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता का परिचायक है।
1: 2 महीने के भीतर सारी जांच मुकम्मल की जाएगी और उसके बाद जो भी ट्रायल कोर्ट होगा, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, उसमें ये 3 महीने, यानी जिस दिन वारदात रिपोर्ट हुई है उस दिन से लेकर के आखिरी निर्णय आने तक 5 महीने से ज्यादा अवधि काल नहीं रहा जाएगा।
0: श्री सिंह ने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को भी दोहराता है कि देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस के गौरव गोगोई ने कहा कि सरकार शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं है।
2: ये सरकार शिक्षा विभाग को लेकर गंभीर नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहिए। ये सिर्फ एक दिखावा का बिल है, क्योंकि ये बिल एक संशोधन बिल है।
0: भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने इस विधेयक को क्रांतिकारी कदम बताया।
3: ट्रांसफॉर्मेटिव अमेंडमेंट है, इसकी न केवल आवश्यकता है बल्कि ये आज के समय की मांग भी है, और इस अमेंडमेंट को लाना आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संवेदनशीलता और उनकी जिम्मेदाराना सरकार का प्रमाण। जब एक कंपेटिटिव एग्जामिनेशन कॉम्प्रोमाइज होता है तो उसका असर केवल उस कैंडिडेट पे नहीं होता जिसका भाग्य दाव पर लग जाता है, और ये बिल ये ज्यूरिसडिक्शन की उलझन को सुलझाता है, उसको समाप्त ही कर देता है।
0: समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने विभिन्न परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने पर चिंता व्यक्त की। AITC के अभिषेक बनर्जी, तेलुगु देशम पार्टी के लाबू श्री कृष्ण देव रायलु और शिवसेना के डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने विधेयक का समर्थन किया। तेलुगु देशम के सांसद ने प्रश्न पत्र तैयार करने वाली समितियों के विकेंद्रीकरण की भी मांग की। विधेयक पर अभी चर्चा पूरी नहीं हुई है। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने सदन को आज सुबह 11 बजे फिर से शुरू होने तक के लिए स्थगित कर दिया। पश्चिम बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए और नीट परीक्षा के पेपर लीक से संबंधित विरोध प्रदर्शनों के सभी पहलुओं के मूल्यांकन के बाद राज्य सरकार ने विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने का निर्णय लिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
4: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 14555 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को अपनी स्वीकृति दे दी है। दिल्ली सचिवालय में कल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस योजना में पंजीकरण के लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल 1 अगस्त से खुल जाएगा।
2: बहनों के अप्लाई करने के बाद, स्क्रूटनी होने के बाद जो भी अप्रूवल रहेगा उसके बाद मुझे लगता है कि राखी पे हम पहली किस्त पहले लॉट की बहनों को दे पाएंगे। ये दिल्ली की बहनों के लिए बहुत ही खुशी का अवसर है कि हमने अपनी सरकार के मात्र 1.25 साल के भीतर इसको कर दिया है दिल्ली की बहनों के लिए, जिसका लाभ अब उस श्रेणी में आने वाली सभी बहनें ले पाएंगी।
1: झारखंड में सुरक्षा बलों ने नक्सल विरोधी अभियान में

0: बड़ी सफलता हासिल की है। प्रमुख माओवादी नेता और पोलित ब्यूरो सदस्य मिसिर बेसरा को धनबाद गिरिडीह सीमा से गिरफ्तार किया गया है। उस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। क्षेत्रीय समिति सदस्य मेहनत उर्फ मोछू, माओवादी कार्यकर्ता गौरव और 2 ग्रामीणों को भी संयुक्त अभियान के दौरान गिरफ्तार किया गया। आध्यात्मिक और शैक्षणिक गुरुओं को समर्पित गुरु पूर्णिमा का पर्व आज मनाया जा रहा है, जिसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस अवसर पर लोग अपने गुरुओं को याद करते हैं और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। भारतीय जनता पार्टी आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रव्यापी श्री गुरु रविदास महाराज समरसता संकल्प अभियान का शुभारंभ करेगी। इस अभियान का औपचारिक उद्घाटन आज वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर स्थित संत रविदास के जन्म स्थान पर किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: आज वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर स्थित संत रविदास के जन्म स्थान पर इस अभियान का औपचारिक शुभारंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम यहां संत रविदास के जन्म स्थान पर दर्शन करेंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे। इस अभियान के तहत संत रविदास के पवित्र जन्म स्थान की मिट्टी को 131 कलशों में भरकर उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों और देश भर के अन्य राज्यों में भेजा जाएगा। एक समरसता संकल्प सभा का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें लगभग 25,000 लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। कार्यक्रमों की यह श्रृंखला माघी पूर्णिमा और संत रविदास की जयंती यानी अगले वर्ष 20 फरवरी तक चलेगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्य भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी, संगठन महासचिव धर्मपाल सिंह और अन्य प्रमुख नेताओं के इस कार्यक्रम में शामिल होने की उम्मीद है। पवित्र मिट्टी से भरे 131 कलशों की विधिवत पूजा की जाएगी और उन्हें विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों को सौंप दिया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: मध्य प्रदेश में भी आज यह अभियान शुरू होगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर POJK में बर्बर सरकारी कार्रवाई में मरने वालों की संख्या पिछले 2 दिनों में बढ़कर 30 हो गई है, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। इस बीच एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तानी सेना द्वारा पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ घातक बल के प्रयोग की खबरों की स्वतंत्र और पारदर्शी जांच की मांग की है। अमरीका ने कहा है कि ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने कल रात पश्चिम एशिया क्षेत्र में तैनात अमरीकी बलों पर अचानक हमले के प्रयास में कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। अमरीकी केंद्रीय कमान ने कहा कि सभी ईरानी मिसाइलों को रोक दिया गया और अमरीकी बल सतर्क और उच्च स्तर की तैयारी में हैं। अमरीका ने यह भी दावा किया कि पिछले 72 घंटों में 30 से ज्यादा हवाई ड्रोन हमलों के साथ ही अमरीका और सऊदी लड़ाकू विमानों ने पूर्वी इराक में कई रसद और हथियार स्थलों पर हमले किए। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वो इस स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। हरजिंदर कौर ने महिलाओं की 69 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक जीता है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के पहले पन्ने पर पेपर लीक मुद्दे पर संसद में हुई बहस और पेपर लीक मामलों को रोकने के लिए बनाए गए नए कानून से संबंधित समाचार छाए हुए हैं। लोकसत्ता ने अपनी पहली खबर को शीर्षक दिया है पेपर लीक, मोदी सरकार ने बनाया विश्व का सबसे कठोर कानून। राजस्थान पत्रिका ने सरकार और विपक्ष दोनों के वक्तव्यों से अपनी खबरों की शुरुआत की है। पंजाब केसरी ने इस खबर को शीर्षक दिया है पूर्व सरकारों में भी हुए पेपर लीक। साथ ही प्रियंका गांधी की इस टिप्पणी को भी प्रमुखता से छापा है, प्रधानमंत्री को कैमरे का नहीं दिल का एंगल बदलना पड़ेगा। दैनिक भास्कर ने पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर के घटनाक्रम को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है POK में सेना ने चुनाव का विरोध कर रहे लोगों पर गोलियां बरसाई, 30 मौतें। पत्र ने मारे गए नागरिकों की तस्वीर भी प्रकाशित की है। अमर उजाला ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के शानदार प्रदर्शन को पहली खबर बनाते हुए शीर्षक दिया है एक दिन में 6 पदक। पत्र ने पदक विजेता खिलाड़ियों की तस्वीरें छापी हैं। जनसत्ता ने अपने संपादकीय को शीर्षक दिया है खतरे का तापमान। पत्र का कहना है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए दुनिया भर में कई योजनाएं और कार्यक्रम बनाए गए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उन्हें अमल में लाने की गंभीरता कहीं नजर नहीं आती। विडंबना यह है कि कार्बन उत्सर्जन में जिन देशों का योगदान सबसे कम है उन्हें ही जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का खामियाजा सबसे ज्यादा भुगतना पड़ रहा है।

0: श्रोताले सुन्दै थियो लोकगायक बिरेन राईको स्वरमा यो लोक भाकालाई, र यो लोक भाकापछिको समय हो बिहानको ठिक 8:45 अनि 9 सेकेन्ड भइरहेको, र बगेको समयमा प्रसारण गर्न लागिरहेका छौँ सन्दर्भ अनि केही हिन्दी चलचित्रका गीतहरू। र आजको सन्दर्भको विषय रहेको छ मोहन बगान दिवसको अवसरमा फुटबल खेल र भारतीय प्रतिभाको बदलिँदो स्वरूप। तर यो कार्यक्रममा जाँदा पहिला सुनौँ यहाँनिर एउटा सन्देशलाई।
1: बहू जी, मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं, जैसे जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है
2: तो लेन देन
1: वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं,
2: ओ
1: जैसे UPI से।
2: अच्छा
1: हाँ, और सुनो एक और नियम है।
2: वो क्या है मम्मी जी?
1: तुम्हारी मुँह दिखाई भी UPI से मिलेगी।
2: हम भी ना मम्मी जी।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
4: हर लेन देन अब है आसान।

लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर फिर चर्चा शुरू होगी। ये विधेयक लोक परीक्षाओं में अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति को जब्त करने जैसे कठोर दंड शामिल हैं। कल कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि नया कानून देश के विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता का परिचायक है। श्री सिंह ने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस संकल्प को भी दोहराता है कि देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस के गौरव गोगोई ने कहा कि सरकार शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं है।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने आवास पर सचिवों के साथ दूसरी उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने वित्त और अर्थव्यवस्था, वाणिज्य और उद्योग तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों से संबंधित मंत्रालयों और विभागों की भावी कार्यसूची की समीक्षा की। बैठक का मुख्य उद्देश्य विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को गति देना था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: बैठक के दौरान श्री मोदी ने मंत्रालयों और विभागों के बीच एकजुटता की भावना के साथ काम करने का आग्रह किया। नागरिक केंद्रित शासन के महत्व का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की जनता शासन के केंद्र में रहनी चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि प्रत्येक निर्णय और नीति आम नागरिक के हितों और आकांक्षाओं के अनुरूप होना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि भारत बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश कर रहा है, लेकिन स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के विकास को भी समान प्राथमिकता दी जानी चाहिए। आदित्य प्रताप सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने कहा है कि देश में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने, उससे जुड़ी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और मछुआरों की आजीविका में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के लिए 1,54,57,00,000 रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। अमेरिका ने कहा है कि ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कल रात पश्चिम एशिया क्षेत्र में तैनात अमेरिकी बलों पर अचानक हमले के प्रयास में कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने कहा कि सभी ईरानी मिसाइलों को रोक दिया गया और अमेरिकी बल सतर्क तथा उच्च स्तर की तैयारी में है। ओडिशा में लगातार हो रही बारिश से राज्य के कई हिस्सों में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। इसके कारण भद्रक जिला सबसे अधिक प्रभावित है। अधिकारियों ने संवेदनशील क्षेत्रों में बचाव और राहत कार्य तेज कर दिए हैं। उधर असम में बाढ़ से मरने वालों की आधिकारिक संख्या बढ़कर 75 हो गई है। शिवसागर जिले में ही कल 7 और लोगों की मौत हुई। ऊपरी असम के जिलों में बाढ़ की स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है और अधिकतर क्षेत्रों में बाढ़ का पानी उतर रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्व शर्मा ने बाढ़ से संबंधित घटनाओं में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के लिए 4,00,000 रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक तेज वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लिए अगले 2 दिनों तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में आज मूसलाधार वर्षा हो सकती है। आज वैश्विक बाघ दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाघ संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले वन कर्मियों और वैज्ञानिकों की सराहना की है। वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत ने बाघों के संरक्षण में शानदार सफलता हासिल की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री यादव ने कहा कि विश्व के 75% बाघ भारत में है। आध्यात्मिक और शैक्षणिक गुरुओं को समर्पित गुरु पूर्णिमा आज मनाई जा रही है, जिसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। प्रधानमंत्री ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वे स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने रजत पदक जीतने पर गुलवीर सिंह को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: पर भारत्तोलक हरजिंदर कौर और धावक गुलवीर सिंह को बधाई दी। बाद में अध्यक्ष ने प्रश्नकाल चलाने की कोशिश की तो विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल सदस्यों का होता है और सरकार से जवाब मांगना सदस्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम है। श्री बिरला ने आरोप लगाया कि कुछ विपक्षी सदस्य जानबूझकर प्रश्नकाल में बाधा डाल रहे हैं जो उचित नहीं है।
1: प्रश्नकाल के बाद इस चर्चा में भाग लीजिए, आप माननीय सदस्यों के हक को नहीं मार सकते, ये तरीका उचित नहीं है। आप अगर सदन को व्यवधान करना चाहते हैं, नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा करना चाहते हैं, ये संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है।
0: उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। आज सवेरे सदन की बैठक शुरू होते ही कई केंद्रीय मंत्रियों ने सदन के पटल पर दस्तावेज रखे। कोयला, खान और इस्पात पर विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट भी पेश की गई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद में चर्चा के दौरान कांग्रेस के सांसदों पर लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 के प्रावधानों पर चर्चा न करने और सदन में विभिन्न राजनीतिक मुद्दे उठाने का आरोप लगाया है।

0: उम्मीद करते हैं राहुल गांधी जी और बाकी लोग बिल पे बोले, इतना महत्वपूर्ण बिल पे चर्चा हो रहे है और वो इधर उधर का बात करके भटकाने के लिए और राजनीतिकरण करके वो ध्यान भटकाना चाहते हैं। इतना अच्छा बिल लाया है और एग्जामिनेशन को लेकर के कोई और सजेशन है तो सजेशन दे सकते हैं कांग्रेस पार्टी। इतना महत्वपूर्ण बिल है और बिल पे नहीं बोलते हैं, ये ठीक बात नहीं है।
1: भारतीय खाद्य सुरक्षा तथा मानक प्राधिकरण ने दिल्ली स्थित एक निजी होटल का लाइसेंस खाद्य नियमों का उल्लंघन करने के कारण निलंबित कर दिया है। इनमें खराब हो चुके खाना पकाने के तेल का उपयोग करना और भोजन की खराब गुणवत्ता शामिल है। सोशल मीडिया पोस्ट में खाद्य सुरक्षा नियामक ने कहा कि जन स्वास्थ्य के हित में लाइसेंस तत्काल प्रभाव से 15 दिन के लिए निलंबित किया जाता है और खाद्य व्यवसाय संचालक को सभी खाद्य संबंधी गतिविधियां तुरंत बंद करनी होगी। खाद्य सुरक्षा नियामक ने सभी नियमों का पालन करने के लिए 15 दिन का समय भी दिया है, अन्यथा लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने दक्षिण पश्चिमी जापान के कुमामोतो इलाके में कल आए जबरदस्त भूकंप पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने वहां के लोगों और सरकार के प्रति भारत का समर्थन और एकजुटता जाहिर की। भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने कहा है कि प्रभावित इलाकों में बचाव कार्य चल रहा है। यूक्रेन के कीव स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि एमवी अमीर 1 जहाज पर सवार भारतीय नाविकों से संबंधित स्थिति उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और वे जहाज पर सवार सभी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संबंधित पक्षों के साथ निरंतर संपर्क में हैं। दूतावास ने ये जानकारी सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से दी। आज वैश्विक बाघ दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर वन्य जीव प्रेमियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक बाघ आबादी का 70% से अधिक हिस्सा भारत में स्थित है। उन्होंने कहा कि भारत के बाघ संरक्षण प्रयास प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने की सदियों पुरानी संस्कृति से प्रेरित हैं और जनता की सामूहिक इच्छा शक्ति से संचालित हैं। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वे स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ने पदक जीतने पर गुलवीर सिंह को बधाई दी है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज लगभग 1% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 849 अंक बढ़कर 77,615 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: these.
1: At least 40 people were killed and dozens injured in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, POJK, over the last 2 days during a brutal crackdown by Pakistani forces amid escalating unrest in the region. Citing reports, the United Kashmir People's National Party on Wednesday alleged that around 40 civilians were killed while several others were injured and arbitrarily arrested between 27th and 28th of July in Rawalkot, Mirpur and other areas of the occupied territory. International Tiger Day is being observed across the world today to raise awareness about tiger conservation, protect natural habitats and address the declining numbers of wild tigers. Prime Minister Narendra Modi has extended his greetings saying India is home to 70% of the global tiger population. He noted that India's tiger conservation efforts are inspired by the nation's centuries-old culture of living in harmony with nature and powered by the collective will of the people. Addressing an event in New Delhi, Minister of Environment, Forest and Climate Change Bhupendra Yadav today said that tiger conservation is not merely about protecting one species but about safeguarding the entire ecological system and preserving India's compassionate relationship with nature.
2: India has made significant strides in conservation under Prime Minister Narendra Modi's leadership. The tiger population has increased from 2,226 to over 3,600. Tiger reserves have expanded from 47 to 58 and elephant reserves have also gone up from 28 to 32. Underscoring the country's growing commitment to water conservation, designated Ramsar sites have also grown from 26 to 100.
3: Designated Ramsar sites ki sankhya 26 thi, jo badhkar ke ab 100 ho gayi.
1: During the event, he also launched ecotourism web portal developed by the National Tiger Conservation Authority. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Lok Sabha continues discussion on Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026. Government says bill aims to strengthen students' confidence in examination system. Home Minister Amit Shah reviews flood relief efforts in Assam, says centre to provide all help to Assam during difficult time. India strongly condemns recent attacks on several maritime vessels in Strait of Hormuz, says commerce through international waterways must be restored. Death toll reaches 40 in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir following brutal crackdown by Pakistani forces. And International Tiger Day 2026 being observed today, India leads the world in tiger conservation efforts with nearly 70% global tiger population. And with that, we end the midday news.
4: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर फिर चर्चा सरकार ने कहा विधेयक का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों का विश्वास बढ़ाना है गृह मंत्री अमित शाह ने असम में बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा की उन्होंने कहा सरकार इस कठिन समय में असम को हर संभव सहायता प्रदान करेगी भारत ने हुरमूज जलडमरू मध्य में हाल में हुए कई समुद्री जहाजों पर हमले की कड़ी निंदा की कहा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों से व्यापार बहाल होना चाहिए पाकिस्तानी सेना की बर्बर कार्रवाई के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मरने वालों की संख्या 40 हुई और आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा विश्व में बाघों की कुल संख्या का 70% भारत में अब समाचार विस्तार से लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा फिर शुरू हुई ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन का प्रावधान करता है विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए गए हैं इसके तहत दोषी पाए जाने वालों के लिए अधिकतम 10 वर्ष के कारावास 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने और दोष सिद्ध अपराधियों के संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने का प्रावधान किया गया है ताकि मामलों की दैनिक आधार पर सुनवाई हो सके इसके अतिरिक्त पुलिस थाने में मामला दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर जांच पूरी करना

0: अनिवार्य होगा जबकि आरोप पत्र दाखिल होने के 3 महीने के भीतर मुकदमे का निपटारा करना होगा। केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने ये विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया था। चर्चा में भाग लेते हुए जनता दल यूनाइटेड के सांसद दिलेश्वर कामत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये विधेयक विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करेगा और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि ये विधेयक विद्यार्थियों के हित में लाया गया है। वहीं विधेयक का विरोध करते हुए आरएसपी सांसद एनके प्रेमचंद्रन ने कहा कि विधेयक अपने घोषित उद्देश्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। विधेयक पर चर्चा के दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि देश की शिक्षा व्यवस्था अब बहुत महंगी हो गई है। इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने गृह मंत्री अमित शाह पर राहुल गांधी की टिप्पणियों पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की। श्री रिजिजू ने श्री गांधी से सदन में अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगने की मांग की।
1: कौन सा ऑर्डर है वो ऑर्डर पे आप निकाल के बताइए। आपने कहा होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया है फायरिंग के लिए, आप वो ऑर्डर का कॉपी निकालिए। आप बताइए किसने आपको बताया, कौन सा ऑर्डर नंबर किस व्यक्ति को कहा है, कौन सा अधिकारी, आप कॉपी निकाल करके सदन में रखिए। ऐसा नहीं हो सकता है, चर्चा ऐसा नहीं हो सकता है। कुछ भी मन में चाहेगा बोल करके आप भाग जाएंगे हेडलाइन बतौरने के लिए, ऐसा नहीं हो सकता। ये भारत का संसद है, यहाँ जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए।
0: श्री राहुल गांधी की टिप्पणियों पर हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली है। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सांसद जॉन ब्रिटास ने जेएनयू छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष आयशी घोष के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा पार्टी मुख्यालय में कथित तौर पर घुसने का मुद्दा उठाया। इस पर सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि यह कानून व्यवस्था का एक सामान्य मामला है। हालांकि विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांग पर जोर देते हुए विरोध जारी रखा, जिसके कारण सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। राज्यसभा की कार्यवाही जारी है। भाजपा सांसद डॉ. सतीश पूनिया ने संसद में कांग्रेस के आचरण की आलोचना करते हुए आरोप लगाया है कि पार्टी रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने में विफल रही है। भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने भी विपक्ष पर परीक्षा सुधारों पर हुई चर्चा में रचनात्मक रूप से भाग न लेने का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष ने प्रस्तावित कानून में कोई कमी नहीं बताई और न ही सुधार के लिए कोई सुझाव दिया। भाजपा सांसद शशांक मणि ने लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 को प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा के कथित पेपर लीक मामले के विरोध में झारखंड समेत कई भाजपा सांसदों ने आज संसद परिसर में प्रदर्शन किया। उन्होंने मामले की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई जांच और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता संजय सेठ ने भी मामले की सीबीआई जांच की मांग की।
2: झारखंड के अंदर एक टीडीपीएल एजेंसी है जो परीक्षा कराती है, उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको ब्लैकलिस्टेड किया, यहाँ तक कि जेपीएससी ने ब्लैकलिस्टेड किया, फिर उसको बुलाकर पिछले 4 सालों से उसी को जिम्मा दे दिया। जो ब्लैकलिस्टेड है आपने भी किया, थालियां परोस के दे दिया, अब आप कहां से न्याय दे पाओगे। तभी तो आज झारखंड के लाखों युवा मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच कराओ। हम तो इंतजार कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी का, कब वो झारखंड आएंगे, कब मुख्यमंत्री आवास के सामने धरने बैठेंगे, कब वो मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री हैं।
0: भाजपा सांसद विद्युत बरन महतो ने झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस सरकार पर गहरे भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया है।
3: यूपीएससी बहाली में पेपर लीक हुआ है और आए दिन झारखंड में इस तरह कुछ ना कुछ होता है। लॉ एंड ऑर्डर एकदम खत्म है, हर विभाग में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इसके लिए हम लोग यहाँ पर धरना दिए हैं। हम लोग चाहते हैं कि जो जेपीएससी में धांधली हुआ इसको सीबीआई जांच करे।
0: लोकसभा ने एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित विधेयकों की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल इस वर्ष संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ा दिया है। समिति के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी सांसद पीपी चौधरी ने संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 तथा केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024 की समीक्षा कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कार्य

0: प्रश्नकाल बढ़ाने का प्रस्ताव सदन में पेश किया। इन विधेयकों का उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की व्यवस्था लागू करना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित कर दिया।
1: प्रश्न है कि सिर्फ पीपी चौधरी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहें,
2: हाँ।
1: जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में ना कहें,
2: हाँ।
1: मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ, हाँ वालों के पक्ष हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंता बिस्व शर्मा से बात की और ऊपरी असम में आई भीषण बाढ़ के मद्देनजर जारी राहत कार्यों की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. शर्मा ने बताया कि श्री शाह ने जमीनी स्थिति का जायजा लिया और आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत, पुनःस्थापन और पुनः निर्माण के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान करती रहेगी। इस बीच असम में बाढ़ की स्थिति में और सुधार हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है।
3: असम में शिवसागर, गोलाघाट, सरायदेव और जोरहाट जैसे सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत और पुनर्वास कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। असम सरकार ने हाल की बाढ़ में प्रभावित लोगों के लिए राहत और पुनर्वास उपायों की घोषणा की है। इनमें बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को अनुग्रह राशि, प्रभावित परिवारों को वित्तीय सहायता तथा विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक सहायता शामिल है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: ओडिशा से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य में गंभीर होती बाढ़ की स्थिति से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
4: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। इसमें 4 लोगों की मौत हुई है और 6 जिले में 2,00,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि लगभग 28,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। जाजपुर, भद्रक, बालेश्वर और केंदुझर सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में शामिल है। बैतरणी नदी आखुआपदा में खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है और सालंदी नदी में अभी भी उफान है। जाजपुर के दशरथपुर में तटबंध टूटने से सैकड़ों परिवार फंस गए हैं। बचाव और राहत कार्यों के लिए NDRF और ODRAF के 17 टीम तैनात की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में हाल में हुए कई समुद्री जहाजों पर हमलों की कड़ी निंदा की है। भारत ने कहा है कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाए जाने की घटनाएं तुरंत बंद होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि पश्चिम एशिया में हमले फिर से शुरू होना चिंता का विषय है।
5: पश्चिम एशिया भारत के लिए बहुत अहम इलाका है। इस इलाके की सुरक्षा और स्थिरता में हमारे बड़े हित जुड़े हैं। भारत का व्यापार और ऊर्जा सप्लाई चेन इस इलाके से मजबूती से जुड़े हैं। खाड़ी इलाके में लगभग 1 करोड़ भारतीय रहते हैं और काम करते हैं। उनकी सुरक्षा और भलाई हमारे लिए सबसे आवश्यक है। इस इलाके में चल रहे टकराव में कुछ समय के लिए रुकावट के बाद हमलों का फिर से शुरू होना और तनाव का बढ़ना चिंता की बात है। ये बहुत चिंताजनक है और भारत तनाव को तुरंत कम करने की अपील करता है।
6: कॉल्स फॉर एन इमीडिएट डीएस्केलेशन ऑफ टेंशंस।
0: श्री हरीश ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर आवाजाही और व्यापारिक स्वतंत्रता शीघ्र बहाल की जानी चाहिए। यूक्रेन के कीव स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि MV अमीर वन जहाज पर सवार भारतीय नाविकों से संबंधित स्थिति उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और वे जहाज पर सवार सभी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संबंधित पक्षों के साथ निरंतर संपर्क में हैं। दूतावास ने ये जानकारी सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से दी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ती जा रही है। जम्मू कश्मीर मानवाधिकार निगरानी संस्था ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के कार्यालय से हस्तक्षेप करने की अपील की है। ये अपील उन खबरों के बाद की गई है जिनमें आरोप लगाया गया है कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा की गई गोलीबारी में 40 से अधिक प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है और कई घायल हुए हैं। जम्मू कश्मीर मानवाधिकार निगरानी संस्था ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क को भेजी अपनी अपील में कहा है कि ये घटना 27 जुलाई को ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी द्वारा शांतिपूर्ण मार्च के रावलकोट से मुजफ्फराबाद की ओर दोबारा शुरू होने के बाद हुई। उधर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने जारी एक बयान में

0: कहा है कि किसी नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और शांतिपूर्ण सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन बनाने के अधिकार के उल्लंघन को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आज वैश्विक बाघ दिवस है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर वन्य जीव प्रेमियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व में बाघों की कुल संख्या का 70% भारत में है। भारत के बाघ संरक्षण प्रयास प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने की सदियों पुरानी संस्कृति से प्रेरित हैं और जनता की सामूहिक इच्छा शक्ति से संचालित हैं। वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत ने बाघों के संरक्षण में शानदार सफलता हासिल की है।
1: हमारी जो टाइगर पॉपुलेशन 2226 थी वो बढ़कर 3600 से ज्यादा हुई। 2014 में 47 टाइगर रिजर्व्स होते थे, उनकी संख्या बढ़कर भी 58 हुई है। एलिफेंट रिजर्व्स की संख्या जो 28 होती थी वो भी पिछले 10 वर्षों में बढ़कर के 32 हुई है। डेजिग्नेटेड रामसर साइट्स की संख्या 26 थी जो बढ़कर के अब 100 हो गई है।
0: इस दौरान श्री यादव ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा विकसित इको टूरिज्म वेब पोर्टल का भी शुभारंभ किया। इस पोर्टल पर सभी बाघ अभयारण्यों की जानकारी उपलब्ध है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल 2026 में गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने रजत पदक जीतने पर गुलवीर सिंह को बधाई दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर फिर चर्चा। सरकार ने कहा विधेयक का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों का विश्वास बढ़ाना है। गृह मंत्री अमित शाह ने असम में बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा की। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में हाल में हुए कई समुद्री जहाजों पर हमलों की कड़ी निंदा की। पाकिस्तानी सेना की बर्बर कार्रवाई के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मरने वालों की संख्या 40 हुई। और आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक न्यायालय स्थापित करने का आदेश दिया गया है। अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। मुकदमे की

0: सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक लोक शिकायत और राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि विधेयक में संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है। नया विधेयक छात्रों और युवाओं के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि विभिन्न दलों द्वारा शासित राज्यों में पेपर लीक होने की घटनाएं हुई हैं।
1: एग्जामिनेशन को लेकर के तरह तरह की वारदातें होती रही, पेपर लीक भी होता रहा। ये केवल किसी एक प्रदेश या एक प्रांत तक सीमित नहीं रहा, ऐसा पहले भी होता था। अलग अलग पार्टियों की सरकारें रही, अलग अलग प्रदेश रहे। सूची लंबी है। 2019 में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का एग्जामिनेशन, वो भी इन्हीं कारणों से, लेकिन उस समय उस तरह की कार्रवाई नहीं की गई जिस तरह की अब प्रस्तावित की जा रही है।
0: विपक्ष के आचरण पर डॉक्टर सिंह ने कहा कि जब एक महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा हो रही है तो विपक्ष सुझाव देने की बजाय राजनीति कर रहा है। उन्होंने विपक्ष के नेता राहुल गांधी के असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने की भी आलोचना करते हुए इसे अनुचित और दुर्भाग्यपूर्ण बताया। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान जनगण मन के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि विधेयक में संशोधन केवल एक विधायी परिवर्तन नहीं है। श्री राय ने कहा कि वंदे मातरम का जानबूझकर अपमान करना वर्तमान कानून के अंतर्गत दंडनीय होगा। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम का विरोध तुष्टिकरण की नीति को दर्शाता है जो राष्ट्र के गौरव को ठेस पहुंचाता है। गृहमंत्री अमित शाह ने बाढ़ प्रभावित असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा से बात कर राहत कार्यों की समीक्षा की। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि गृहमंत्री ने जमीनी स्थिति का जायजा लिया और आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत, पुनर्स्थापन और पुनर्निर्माण के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान करती रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये नशाखोरी के खिलाफ 100 सप्ताह का एक राष्ट्रव्यापी जनभागीदारी आंदोलन है। इस पहल का लक्ष्य जागरूकता, सामुदायिक सहभागिता और निरंतर जनभागीदारी को बढ़ावा देकर नशा मुक्त भारत के निर्माण के लिए युवाओं को एक सामूहिक राष्ट्रीय मिशन में एकजुट करना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में भारतीय पारंपरिक कला रूपों के कलाकारों से मुलाकात की और उनके कार्यों का अवलोकन किया। बनारस भित्तिचित्र थंका नायका, केरल भित्तिचित्र बसोहली, सुरपुर और मैसूर जैसी कला शैलियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 12 कलाकार कलाकार निवास कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रपति भवन में रह रहे हैं। कलाकार निवास कार्यक्रम भारत की कलात्मक परंपराओं की भावना का उत्सव है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में तजिंदर पाल सिंह तूर और समरदीप सिंह गिल ने शॉटपुट फाइनल में जगह बना ली है। आज रात महिला शॉटपुट फाइनल में मनप्रीत कौर खेलेंगी। वहीं ऊंची कूद के फाइनल में श्रीशंकर मुरली और लोकेश सत्यानंद चुनौती पेश करेंगे। पदक तालिका में भारत 2 स्वर्ण, 7 रजत और 3 कांस्य पदकों के साथ 9वें स्थान पर है। हॉकी इंडिया ने आज एशियाई खेलों के लिए 20 सदस्यीय भारतीय पुरुष हॉकी टीम की घोषणा कर दी है। हरमनप्रीत सिंह भारतीय टीम के कप्तान होंगे। ये प्रतियोगिता 19 सितंबर से 4 अक्टूबर के बीच जापान के आईची नागोया में खेली जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: सुनिरहनु भएको छ आकाशवाणी खरसाङ एफएम 103.5 मेगाहर्जमा। सन्ध्याकालीन अधिवेशनका प्रस्तुतिहरूको साथ उपस्थित छु म शोभना, प्रसारण सहयोगी निरन अनि प्राविधिक पक्षबाट सीएल ब्राह्मणको साथमा। अब प्रस्तुत छ फौजीहरूप्रति समर्पित कार्यक्रम जय जवान।

0: सुनिरहनु भयो छ आकाशवाणी खरसाङ। हामीलाई दार्जिलिङ एफएम 100.2 मेगाहर्ज अनि न्यूज अन एआर एपमा पनि सुन्न सक्नुहुनेछ।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: अघिल्लो कार्यक्रम रहेको छ आधुनिक गीतको संगालो सुर संगम, जसमा सुनाइरहेछौ आरती राईको स्वरमा आधुनिक गीत।

0: वाराणसीका प्रहरी आयुक्तलाई नोटिस जारी गरेको छ। सञ्चार माध्यममा आएका समाचारहरूको आधारमा आयोगले स्वत संज्ञान लिँदै दुई हप्ताभित्र यस विषयमा विस्तृत प्रतिवेदन बुझाउन आयोगले आदेश दिएको छ। गुरु पूर्णिमाको पावन अवसरमा आज श्रीनगरको ऐतिहासिक मैसुमा स्थित दशनामी अखडाबाट पवित्र छडी मुबारकलाई विधिपूर्वक बाहिर निकालिएको छ। यस अनुष्ठानसँगै श्री अमरनाथको पवित्र गुफातर्फको वार्षिक यात्रा औपचारिक रूपमा सुरुवात भएको छ। यो यात्रा श्रावण पूर्णिमाको दिन पवित्र अमरनाथ गुफा पुगी विशेष पूजा अर्चना साथ सम्पन्न हुनेछ। आज अन्तर्राष्ट्रिय बाघ दिवस हो। विश्वभर बाघ संरक्षण, तिनीहरूको प्राकृतिक वासस्थानको सुरक्षा र लोप हुँदै गएका बाघको सङ्ख्या वृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ अन्तर्राष्ट्रिय बाघ दिवस पालना गरिन्छ। सन् 2010 रुसको सेन्ट पिटर्सबर्गमा सम्पन्न सम्मेलनबाट यस दिवसको सुरुवात भएको हो। हालैको तथ्याङ्क अनुसार विश्वभर बाघको सङ्ख्या बढेर करिब 5,711 पुगेको र यसमध्ये 70% भन्दा बढी बाघ भारतमा रहेको पाइएको छ। यसको कारणले भारतलाई बाघ संरक्षणमा विश्वकै अग्रणी राष्ट्र स्थापित भएको छ। ग्लास्गोमा जारी राष्ट्रमण्डल खेलकुद 2026 भारतीय खेलाडीहरूले उत्कृष्ट प्रदर्शन जारी राखेका छन्। भारतका धावक गुलवीर सिंहले पुरुष 10,000 मिटर दौडमा रजत पदक जित्दै नयाँ इतिहास रचेका छन्। उहाँ राष्ट्रमण्डल खेलकुदको यो स्पर्धामा पदक जित्ने पहिलो भारतीय एथलिट बनेका छन्। यसका साथै ग्लास्गो खेलकुदमा भारतको कुल पदक सङ्ख्या 12 पुगेको छ। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिले यस उपलब्धिका निम्ति खेलाडीहरूलाई बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ। अब अन्तमा प्रमुख समाचारहरू पुनः एकपटक। लोकसभाद्वारा सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 पारित। धाँधली गर्नेलाई 10 वर्ष जेल र 10 करोडसम्मको जरिमाना। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले 2 अगस्तमा नशामुक्त युवा विकसित भारत सङ्कल्प अभियानको शुभारम्भ गर्नुहुने। राज्यसभाद्वारा राष्ट्रिय सम्मानको अपमान रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित। राष्ट्रगीत वन्दे मातरमले पनि अब राष्ट्रगान सरह कानुनी संरक्षण पाउने। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहद्वारा असमको बाढी अवस्थाबारे समीक्षा। राहत र पुनर्निर्माणका लागि राज्यलाई पूर्ण सहयोगको आश्वासन। आकाशवाणीबाट सुन्दै हुनुहुन्थ्यो समाचार पूरा भयो।
1: खबर पढ्छि सुदीप বসু। এখনকার বিশেষ বিশেষ খবর হলো, পরীক্ষায় দুর্নীতি ও কারচুপিরোধে লোকসভায় পাশ হয়েছে সংশোধনী বিল। জাতীয় স্তোত্র বন্দে মাতরমকে সাংবিধানিক সুরক্ষা দিতে রাজ্যসভায় পাশ হয়েছে জাতীয় সম্মান সংশোধনী বিল 2026। অসমের বন্যা পরিস্থিতি পর্যালোচনা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের। কেন্দ্রের পক্ষ থেকে সব ধরনের সাহায্যের আশ্বাস। হরমুজ প্রণালীতে সম্প্রতি একাধিক বাণিজ্যিক জাহাজের উপর হামলার তীব্র নিন্দা করেছে ভারত। দেশজুড়ে যথোচিত মর্যাদায় পালিত হচ্ছে গুরু পূর্ণিমা। কমনওয়েলথ গেমসে ভারত 12টি পদক জিতেছে। আজ আরও 3টি পদক নিশ্চিত করেছেন ভারতীয় ক্রীড়াবিদরা। আসছি বিস্তারিত খবরে। পরীক্ষায় দুর্নীতি ও কারচুপিরোধে পাবলিক এক্সামিনেশনস প্রিভেনশনস অফ আনফেয়ার মিন্স সংশোধনী বিল আজ লোকসভায় পাশ হয়েছে। এই বিলে 2024 প্রিভেনশন অফ আনফেয়ার মিন্স আইনে সংশোধনী সংস্থান রয়েছে। বিল নিয়ে আলোচনায় জবাবি ভাষণে কর্মী বিষয়ক জন অভিযোগ এবং পেনশন দপ্তরের মন্ত্রী ডক্টর জিতেন্দ্র সিং বলেন, সংশ্লিষ্ট আইনটিকে আরও কঠোর করা এবং দ্রুত ন্যায় বিচার সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে এই সংশোধনী বিল আনা হয়েছে। নতুন এই বিল ছাত্রছাত্রী এবং যুব সমাজের কল্যাণ সুনিশ্চিত করার জন্য সরকারের অঙ্গীকারবদ্ধতার প্রতিফলন।
2: एग्जामिनेशन को लेकर के तरह तरह की वारदातें होती रही, पेपर लीक भी होता रहा। ये केवल किसी एक प्रदेश या एक प्रांत तक सीमित नहीं रहा, ऐसा पहले भी होता था। अलग अलग पार्टियों की सरकारें रही, अलग अलग प्रदेश रहे। सूची लंबी है। 2019 रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का एग्जामिनेशन, वो भी इन्हीं कारणों से, लेकिन उस समय उस तरह की कार्रवाई नहीं की गई जिस तरह की अब प्रस्तावित की जा रही है।
1: এ প্রসঙ্গে বিরোধীদের সমালোচনা করে ডক্টর সিং বলেন, প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা এর আগেও বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন সরকারের আমলে ঘটেছে। বিরোধী দল নেতা রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে অসংসদীয় ভাষা ব্যবহারের অভিযোগ এনে তা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক হিসেবে অভিহিত করেছেন তিনি। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বিরুদ্ধে রাহুল গান্ধীর অভিযোগ খণ্ডন করে শ্রী সিং বলেন, সরকার বারবার স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছে এই নিয়ে প্রতিবাদ আন্দোলনের সময় বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে

0: मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। लोकसभा ने परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए सख्त सजा और फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रावधान करने वाला पेपर लीक रोकने वाला विधेयक पारित किया। राज्यसभा ने राष्ट्रगान के समान कानूनी संरक्षण देने और इसके अपमान को अपराध घोषित करने वाला विधेयक पारित किया। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर, 4 लोगों की मौत और 4 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर 40 हुई। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने चिंता व्यक्त की। और राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाज अंकुश, साक्षी, अरुंधति, सचिन और नरेंद्र ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब तक 9 भारतीय मुक्केबाजों ने पदक सुनिश्चित किए। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि नया विधेयक छात्रों और युवाओं के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
2: सरकार की प्रतिबद्धता का आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर्स की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है, इनको स्थापित करने का भी क्रम प्रारंभ किया जाए। उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया है और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर।
1: डॉक्टर सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ने टास्क फोर्स का गठन भी किया है।
2: कल ही प्रधानमंत्री जी ने एक टास्क फोर्स का भी ऐलान किया है टू रिकमेंड रिफॉर्म्स टू मेक द एग्जाम सिस्टम्स लीक प्रूफ। उसमें कुछ एक बड़े वरिष्ठ लोग सम्मिलित किए गए और साथ ही साथ जो राधा कृष्ण कमेटी गठित की गई थी 22 जून 2024 में, उसमें

0: बंदे मातरम के जानबूझकर किए गए अपमान को भी उसी प्रकार के दंडनीय बनाया जाए जैसा कि वर्तमान कानून में है। हर भारतवासी के राष्ट्र प्रेम का उद्घोष है बंदे मातरम, विकसित भारत का संकल्प है बंदे मातरम।
1: संसद के दोनों सदनों में आज हुई कार्यवाही पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
2: संसद के दोनों सदनों में आज महत्वपूर्ण विधायी कार्य संपन्न हुए, हालांकि कार्यवाही के दौरान कई बार व्यवधान भी देखने को मिला। लोकसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। इसके अलावा लोकसभा ने एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित विधेयक की जाँच कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल संसद के शीतकालीन सत्र 2026 के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। नीट मुद्दे को लेकर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई के विरोध में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। इस कारण लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं चल सका। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्रीय मंत्रियों और भाजपा के नेताओं ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी की टिप्पणी की आलोचना की। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि श्री राहुल गांधी अपने संवैधानिक पद की गरिमा बनाए रखने में विफल रहे हैं।
3: आज राहुल गांधी जी ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो संसदीय नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी पर आरोप लगाया जबकि उनके पास इस प्रकार का कोई सबूत नहीं है। कभी भी कोई लाठी चार्ज, टियर गैस, कैनिंग या पानी के बौछार का आदेश कोई मंत्री नहीं देता है। ये उस मौके पर अनलॉफुल असेंबली को देखते हुए उस मौके के गजेटेड अफसर, पुलिस अफसर और प्रशासन के लोग ये निर्णय लेते हैं। ये मिथ्या आरोप उन्होंने माननीय गृह मंत्री पर लगाया है।
1: केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह ने आरोप लगाया कि सदन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की भाषा संसदीय कार्यवाही के लिए अनुचित थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये नशाखोरी के खिलाफ 100 सप्ताह का राष्ट्रव्यापी जन भागीदारी आंदोलन है। इस पहल का लक्ष्य जागरूकता, सामुदायिक सहभागिता और निरंतर जन भागीदारी को बढ़ावा देकर नशा मुक्त भारत के निर्माण के लिए युवाओं को सामूहिक राष्ट्रीय मिशन में एकजुट करना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में भारतीय पारंपरिक कला रूपों के कलाकारों से मुलाकात की और उनके कार्यों का अवलोकन किया। बनारस भित्तिचित्र, थंका नायका, केरल भित्तिचित्र, बसोहली सुरपुर और मैसूर जैसी कला शैलियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 12 कलाकार कलाकार निवास कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रपति भवन में रह रहे हैं। कलाकार निवास कार्यक्रम भारत की कलात्मक परंपराओं की भावना का उत्सव है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज आगामी नीट स्नातक काउंसलिंग 2026 की तैयारियों की समीक्षा की। श्री नड्डा ने कहा कि काउंसलिंग प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष और योग्यता आधारित तरीके से संचालित की जानी चाहिए। ओडिशा में लगातार जारी तेज बारिश और नदियों में आए उफान से राज्य के बड़े हिस्से को मानवीय संकट में डाल दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बाढ़ के कारण 4 लोगों की मौत हो गई है।
4: बाढ़ का पानी लगातार आगे बढ़ रहा है। उफनती बैतरणी नदी भारी तबाही मचा रही है, जबकि भद्रक, जाजपुर और बालेश्वर में बाढ़ की स्थिति खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। मयूरभंज में लगातार बारिश और नदियों के उफान ने संकट को और बढ़ा दिया है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि 304 ग्राम पंचायत में लगभग 3,80,000 लोग प्रभावित हुए हैं। बचाव और राहत कार्य जारी है। इस बीच IMD ने नुआपड़ा, कलाहंडी, नवरंगपुर और कोरापुट जिले में ऑरेंज वार्निंग जारी की है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: छत्तीसगढ़ से हमारे संवाददाता ने बताया है कि पिछले 2 दिन से जारी मूसलाधार वर्षा के कारण कई जिलों में जनजीवन प्रभावित है।
5: छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में पंटोरा में स्थित कन्या आश्रम में पानी भरने से 50 से अधिक छात्राओं को दूसरे स्थान पर भेजा गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी जिला कलेक्टरों सहित अन्य अधिकारियों को सतर्क रहने और जरूरी उपाय करने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान छत्तीसगढ़ के बालोद और कांकेर जिलों के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
1: मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पूर्वी

0: मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल और माहे, कोंकण, गोवा, पंजाब, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और लक्षद्वीप में भी तेज वर्षा का अनुमान है। ऊपरी असम में आई विनाशकारी बाढ़ के मद्देनजर विधानसभा का पहला बजट सत्र आज निर्धारित समय से दो दिन पहले समाप्त हो गया। एक रिपोर्ट।
1: पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री अतुल बोरा ने सदन को बताया कि राज्य सरकार बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम कल ऊपरी असम का दौरा करेगी ताकि बाढ़ पीड़ितों को प्राथमिकता के आधार पर सहायता उपलब्ध कराई जा सके। सदन ने जान गंवाने वाले लोगों की स्मृति में एक मिनट का मौन भी रखा। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ रही है। मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने प्रदर्शनकारियों की मौत पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने कहा कि एक नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन के अधिकारों के उल्लंघन के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। उधर ब्रिटेन में रहने वाले कश्मीरियों ने आज बर्मिंघम स्थित पाकिस्तानी वाणिज्य दूतावास के बाहर हत्याओं के विरोध में प्रदर्शन किया। उन्होंने संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए दूतावास के बाहर जूते रखे। कई ब्रिटिश सांसदों ने कथित कार्रवाई की निंदा की। सांसद नाज शाह और इमरान हुसैन ने प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी को बर्बर बताया और जवाबदेही तथा शांतिपूर्ण समाधान की मांग की। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा नौसेना के लिए निर्मित 8 पनडुब्बी रोधी जलपोतों में से 7वें जलपोत मछलीपट्टनम का आज जलावतरण किया गया। ये जलपोत समुद्र के भीतर की निगरानी, पनडुब्बी रोधी युद्ध अभियान और कम तीव्रता वाले समुद्री अभियान के साथ साथ बारूदी सुरंग भेदन क्षमता से लैस है। 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री की ये परियोजना भारतीय पोत निर्माण उद्योग की बढ़ती क्षमता को प्रदर्शित करती है। दिल्ली पुलिस ने 20 जुलाई के नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन के दौरान एक प्रदर्शनकारी को गोली लगने की अफवाहों का खंडन किया है। ये अफवाह मेडिको लीगल सर्टिफिकेट के निष्कर्षों से मेल नहीं खाती। पुलिस ने कहा कि सर्टिफिकेट में घाव को हल्की चोट बताया गया है। डॉक्टर के अनुसार गोली लगने का कोई सबूत नहीं है। पुलिस ने लोगों को ऐसी अफवाह फैलाने से पहले प्रामाणिक स्रोतों से जानकारी की पुष्टि करने की सलाह दी है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के एक निजी स्कूल में 5 वर्षीय बच्चे के साथ शिक्षक द्वारा कथित यातना और अमानवीय व्यवहार के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और वाराणसी पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लेते हुए आयोग ने 2 सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। सरकार ने कहा है कि लगभग 6 दशकों की हिंसा के बाद देश वामपंथी उग्रवाद से मुक्त हो गया है। राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि उपलब्धि वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए 2015 की राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना के दृढ़ कार्यान्वयन तथा केंद्र और राज्य सरकारों के समन्वित प्रयासों से हासिल हुई है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमरीश सक्सेना।
2: सेंसेक्स 889 अंक ऊपर चढ़कर 77,655 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 265 अंक की तेजी के साथ 24,250 पर बंद हुआ। उधर अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 21 पैसे मजबूत होकर 1 अमरीकी डॉलर की तुलना में 95.64 रुपए पर बंद हुआ।
0: ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय मुक्केबाज अंकुश, साक्षी, अरुंधति, सचिन और नरेंद्र ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारतीय मुक्केबाजों ने अब तक 9 पदक सुनिश्चित कर लिए हैं। पदक तालिका में भारत 2 स्वर्ण, 7 रजत और 3 कांस्य पदकों के साथ 9वें स्थान पर है। जम्मू कश्मीर में आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर श्रीनगर के मैसुमा स्थित ऐतिहासिक दशनामी अखाड़े से पारंपरिक पवित्र गदा चारी मुबारक को विधिपूर्वक निकाला गया। ये समारोह

0: Jeff Jaka mi shejke.
1: ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है, कार्यक्रम में प्रस्तुत है मॉनसून में आपदाओं से बचाव के उपाय और जन जागरूकता पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर डी आर पटनायक और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान में प्रोफेसर सूर्य प्रकाश। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
2: नमस्कार। एक तरफ आसमान से बरसती जिंदगी तो दूसरी तरफ उसी बारिश का रौद्र रूप। कहीं किसान की आंखों में अच्छी फसल के सपने हैं तो कहीं बाढ़ का पानी घरों की चौखट लांघ चुका है। कहीं पहाड़ दरक रहे हैं, कहीं शहर कुछ घंटों की बारिश में थम जा रहे हैं और कहीं एक मोबाइल पर आया छोटा सा मौसम अलर्ट हजारों जिंदगियां बचाने की उम्मीद बन जाता है। आज मॉनसून केवल एक मौसम नहीं रहा, ये विज्ञान की परीक्षा भी है, प्रशासन की तैयारी भी और समाज की सामूहिक जिम्मेदारी भी। बदलते जलवायु परिदृश्य में मॉनसून का स्वरूप लगातार बदल रहा है। कहीं कुछ घंटों में पूरे महीने जितनी बारिश हो जाती है तो कहीं लंबे समय तक वर्षा का इंतजार बना रहता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हम आने वाले खतरों को समय रहते पहचान पा रहे हैं? क्या हमारी चेतावनी प्रणाली, हमारा आपदा प्रबंधन तंत्र और हमारी सामुदायिक तैयारी इस बदलती चुनौती का सामना करने के लिए पर्याप्त हैं? इन्हीं महत्वपूर्ण सवालों पर आज होगी चर्चा। हमारे साथ हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर डी आर पटनायक, जो मौसम पूर्वानुमान और चेतावनी प्रणाली के विशेषज्ञ हैं। साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर सूर्य प्रकाश, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के विशेषज्ञ, जो आपदा जोखिम न्यूनीकरण और आपदा प्रबंधन की रणनीतियों पर वर्षों से कार्य कर रहे हैं। आप दोनों का आकाशवाणी के इस कार्यक्रम चर्चा का विषय है में बहुत बहुत स्वागत है।
3: नमस्कार।
2: डॉक्टर पटनायक, शुरुआत आपके साथ करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में देखा गया है कि कुल मानसूनी बारिश भले सामान्य रहे, लेकिन जिसे कहते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन हाई इंटेंसिटी रेनफॉल, यानी कम समय में बहुत ज्यादा बारिश की घटनाएं बढ़ गई हैं। आईएमडी अपने मेशो स्केल और अर्ली वार्निंग मॉडल्स को इस सूक्ष्म स्तर के पूर्वानुमान के लिए पिछले कुछ वर्षों में अगर हम कहें तो किस तरीके का अपडेट उसमें आया है, क्या नई तकनीक आई है और उसका कितना असर आप देख रहे हैं?
4: जैसे आपने पहले भी बताया कि ये क्लाइमेट चेंज जो बोलते हैं, क्लाइमेट चेंज के कारण जो हाई इंटेंसिटी रेनफॉल उसका फ्रीक्वेंसी जो है वो नंबर बढ़ रहा है। ये एक बहुत परिमाण में हमारा जितने सारे भी डाटा देखा गया है पिछले 100 साल 50 साल अगर हम देखेंगे तो ये जो जितना हैवी रेनफॉल एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल का इवेंट जो है उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है। ये क्लाइमेट चेंज के कारण इसलिए हो रहा है कि जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसमें जो मॉइस्चर है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है उसका काफी बढ़ जाता एटमॉस्फेयर में और जब इंस्टेबिलिटी होता है तो हैवी डाउनपोर हो जाता है। इसलिए अगर पूरा रेनफॉल अगर सीजन का मानसून सीजन जैसे जून टू सितंबर में अगर टोटल रेनफॉल अगर कंट्री एज ए होल अगर हम देखेंगे पिछले 30-40 साल में 50 साल में तो ऐसा कोई सिग्निफिकेंट ट्रेंड नहीं दिखने को मिलता है। वो बहुत अच्छी बात है, हमारा एग्रीकल्चर देश है। लेकिन तो हमारा जो एग्रीकल्चर देश है उसमें क्या होगा कि ये तो हमको अच्छी बात है कि रेनफॉल जो है डिक्रीजिंग ट्रेंड या इंक्रीजिंग ट्रेंड नहीं है। लेकिन जब हम टोटल रेनफॉल को हम डिवाइड देते हैं कि एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल जो कि 10 सेंटीमीटर से ज्यादा या 20 सेंटीमीटर से ज्यादा एक दिन में अगर ऐसा होता है तो उसका अगर काउंट करेंगे तो वो सब दिन का बढ़ रहा है। तो आप जैसे सवाल किया कि हमारा प्रणाली में पिछले 5 साल 10 साल में हमने क्या सुधार किया है जो कि उसका आलियन, तो हमने काफी हमारा इम्प्रूवमेंट इसमें किया है। पहली तो बात यह है कि ये शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन इवेंट को पहले मॉनिटर करना पड़ता है। मॉनिटर करने पर कि अगर कोई चीज क्लाउड डेवलपमेंट हो रहा है या कुछ इस समय हो रहा है तो ये कि ऐसा इमीडिएटली अगर एक दिन में या 12 घंटा में दे देगा तो उसको हम मॉनिटर कैसे करेंगे? हमारे पास मॉनिटरिंग के लिए बहुत सारे हैं, सरफेस ऑब्जर्वेशन है, हम बैलून छोड़ते हैं, हम ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन है, राडार है, सैटेलाइट है, उसमें कंटिन्यूअसली हमारे पास आज 50 राडार है तो हमने इसमें से कंटिन्यूअसली हम देखते रहते हैं कि कोई ये मैंने कन्वेक्टिव क्लाउड बन रहा है क्या। उसके बाद ये जब हो जाता है तो इमीडिएटली हमने इसका सूचित करते हैं कि यस इसी एरिया में बहुत हैवी रेनफॉल होगा। दूसरा है कि हमारे पास न्यूमेरिकल मॉडल, ये जो वेदर प्रेडिक्शन है खाली हम सैटेलाइट रडार इमेज देख के हम फोरकास्ट नहीं देते, उसमें से नहीं होगा, वो थोड़े से थोड़े हमारा 2-3 घंटा के लिए हम बता पाएंगे। लेकिन हम जब 5 दिन पहले कुछ बता रहे हैं कि 7 दिन पहले बता रहे हैं तो इस टाइप का इवेंट होने वाला है 2 दिन के बाद, इसके लिए हमें न्यूमेरिकल मॉडल चाहिए। तो न्यूमेरिकल मॉडल में हमने काफी इम्प्रूव किया है, हमारा सब जितना सारे डाटा अभी सैटेलाइट से AWS से सब आ रहा है वो मॉडल में जा रहा है, मॉडल में प्रोसेस हो रहा है, मॉडल का इम्प्रूवमेंट हुआ है। हमारे पास सुपर कंप्यूटर आया है, सुपर कंप्यूटर क्यों इसलिए चाहे कि बहुत पावरफुल कंप्यूटर का जरूरत पड़ता है जब उधर प्रोड्यूशन करना पड़ता है। तो पावरफुल कंप्यूटर पहले नहीं था हमारा, अभी अभी हमने लाया है पावरफुल कंप्यूटर, जो कि अभी हमारे पास 20 पेटाफ्लॉप से भी ज्यादा मशीन है। इसका चलते हुए हमारा जो मॉडल का जो भी है अच्छा इम्प्रूवमेंट हो गया है। तो इसलिए अर्ली वार्निंग जो मॉडल फोरकास्ट दे देगा, तो हम अर्ली वार्निंग इसमें अच्छे से कर पा रहे हैं, और अर्ली वार्निंग के कारण चलते हमारा वार्निंग जो मैकेनिज्म। बाद में और एक चीज है, ऑब्जर्वेशन हो गया, मॉडलिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, उसके बाद हमारा जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, एक जो बोलते हैं हम जब एक डिसीजन लेते हैं जो कि डिजास्टर मैनेजर को हेल्पफुल होगा, क्योंकि डिजास्टर मैनेजर खाली हम ये हो जाएगा कि ओडिशा में बारिश हो जाएगा ऐसा बोलने से उन्होंने पिन पॉइंट एक्शन नहीं ले पाएंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए आपको एक्यूरेसी चाहिए, आपको लोकेशन स्पेसिफिक चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में उसको हम स्टेट लेवल से फिर हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल में आ जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल से फिर कौन सा सिटी लेवल में आते हैं, तो वो इतना फाइन ट्यून करने के लिए हमारा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम काफी मददगार होता है। और उसके लिए हमारा सेटेलाइट रडार के साथ साथ हमारा जितना भी मॉडल आउटपुट सब बन रहा है, हमारा मॉडल और हम कस्टमाइजली दूसरा मॉडल को भी यूटिलाइज करके हम एक कस्टमाइज फोरकास्ट प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कि हैवी रेनफॉल अभी जैसे ओडिशा में चल रहा है, ये काफी दिन से हमने रेड कलर वार्निंग दिया है। तो ये सब संभव है कि काफी जो ऑब्जर्वेशन, मॉडलिंग, कम्युनिकेशन, हमारा पर डाटा एसिमिलेशन, न्यूमेरिकल मॉडल, फिर हमारा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ये सारे कम्बाइन अगर हम देखेंगे पिछले 10 साल में तो काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस इंडिया में डिपार्टमेंट, उसके चलते हुए हमारा ये फोरकास्ट एक्यूरेसी भी काफी इम्प्रूव।
2: जी डॉक्टर सूर्य प्रकाश, जैसा कि डॉक्टर पटनायक कह रहे हैं कि पिछले कुछ वर्षों में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं मौसम विभाग की प्रणालियों में, जिससे कि जो पूर्वानुमान है वो 100% लगभग सही होने लगे हैं। अब एक व्यवहारिक सवाल पर आते हैं कि जब भी भारी बारिश या बाढ़ की चेतावनी जारी होती है तो एक आम परिवार को अपने घर के स्तर पर क्या सुरक्षात्मक कदम उठाने चाहिए, खासकर अगर हम जैसे बात करें तो कोई इमरजेंसी किट होनी चाहिए, जैसे हम फर्स्ट एड किट रखते हैं अपने घर में, क्या उस तरीके से आपदा के लिए या भारी बारिश की चेतावनी, बाढ़ की चेतावनी के लिए कोई इमरजेंसी किट होनी चाहिए, और उसमें कौन कौन सी जरूरी चीजें होनी चाहिए जो मुसीबत के समय जान बचा सकती है?
0: आनंद जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल किया है। जब भी भारी बारिश की हम चेतावनी आती है तो जन समुदाय को तैयार रहने के लिए कहते हैं, न सिर्फ जन समुदाय बल्कि जो हमारे विभिन्न विभाग हैं जो आपदा प्रबंधन के लिए जिन जिम्मेदार हैं उनको भी तैयार रहने को कहा जाता है। अक्सर एक आम व्यक्ति को या परिवार को जब भारी वर्षा की चेतावनी मिलती है उस समय सबसे पहले तो यही होता है कि आपको कहीं भी घर से बाहर निकलने नहीं चाहिए, क्योंकि बाहर रास्ते में कहीं पर भी बाढ़ मिल सकती है, कहीं पुल टूट सकता है, कहीं रास्ते बह सकते हैं, और इस तरह की कई संभावनाएं आपदाओं की होती हैं जो भूस्खलन या बाढ़ या भूमि के खिसकने के रूप में दिखाई दे सकती हैं। तो इमरजेंसी में आपको एक तो टॉर्च, क्योंकि अक्सर जब भी भारी वर्षा होगी तो पावर सप्लाई ब्रेकआउट होगा, तो उस समय में आपको टॉर्च की एक आवश्यकता रहेगी, एक टॉर्च जरूर होनी चाहिए। और इसके अलावा अगर आपको जरूरी है घर से बाहर निकलना तो आपको एक प्रॉपर अम्ब्रेला या रेनकोट वगैरह की जरूरत रहेगी, और इसके साथ में आप जो है कहीं पर अगर जा रहे हैं और कहीं मिट्टी या मलबे से क्रॉस करते हैं तो अगर आप डंडा या रस्सी भी साथ में रखते हैं तो बहुत हेल्पफुल रहता है। इसके अलावा जो जरूरी आपकी दवाइयां वगैरह हैं जो सर्वाइवल किट्स में जरूरी होती हैं, वाइटल मेडिसिन, वो भी आपके पास उपलब्ध रहनी चाहिए, क्योंकि ऐसे समय में हो सकता है बाजार वगैरह भी खुले ना रहे, तो जो भी बारिश का समय होता है और पूरा चेतावनी आती है उसके अनुसार उस समय अवधि के लिए आपको पूर्ण तैयारियां अपने सर्वाइवल के लिए करके रखनी चाहिए। पहले से हम मॉक ड्रिल्स वगैरह करके रखते हैं, इवैक्यूएशन रूट का हमें पता है, कहीं पे फंस गए या रिक्तिकरण करना है तो कौन से सुरक्षित स्थल हैं या कौन से सुरक्षित भवन हैं जहां पर आप समय रहते हुए अपने बचाव के लिए जा सकते हैं, उनका भी आपको ज्ञान रहना चाहिए। तो ये सब चीजें हैं। इसके अलावा आम व्यक्ति आजकल बारिश के सीजन में कहीं कहीं बाहर पर्वतीय स्थलों पर चले जाते हैं तो वहां पर बड़ा मतलब ध्यान से जाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए भीड़ भाड़ इलाके में या फिसलन वाले इलाके में नहीं जाएं, और कहीं पर भी जैसे ज्यादा लोगों के जाने की संभावना है वहां जाने को आप अवॉइड करें, बचें, ताकि वहां पे भीड़ भाड़ ना हो और किसी तरह की भगदड़ ना मच पाए। तो ये अक्सर होता है कि बारिश के टाइम पे मंदिर में या जो हमारे पिलग्रिमेज प्लेसेस हैं वहां इकट्ठे हो जाते हैं और फिर एकदम बारिश होती है और लोगों में भगदड़ मच जाती है, उसकी वजह से भी कई बार डेथ्स हो जाती है। तो हमको तैयारी के लिए इमरजेंसी किट, जिसमें आपके पास एक टॉर्च होनी चाहिए, वाइटल मेडिसिंस होनी चाहिए, और इसके अलावा आपके पास रस्सी या लाठी हो तो और अच्छा है, और अगर सीटी भी रखते हैं तो अच्छा रहता है दूसरों को सचेत करने के लिए या बुलाने के लिए।
2: डॉक्टर पटनायक, पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि मुंबई, दिल्ली और बाकी बहुत सारे महानगरों के छोटे छोटे ब्लॉक्स में अर्बन फ्लडिंग की समस्या काफी देखने को मिली है। अब इन अर्बन फ्लडिंग्स को लेकर आईएमडी के फ्लैश फ्लड गाइडलाइन सिस्टम, जिसे एफएफजीएस भी कहते हैं, उसका सटीक प्रभाव जमीनी स्तर पर नगर निगम और आपदा टीम तक कितनी तेजी से पहुंचाना संभव हुआ है, इस दिशा में क्या प्रगति हुई है?
4: आजकल जो है अर्बन फ्लडिंग जो है

की एक छोटी सी खिड़की खोलकर हमेशा रखनी चाहिए। खुली खिड़की मन रूपी आंगन में रोशनी लेकर आती है, लेकिन हम अपनी धारणाओं की दीवारें बहुत ऊंची करते चले जाते हैं और इन दीवारों को फिर किराया नहीं जा सकता।

जीवन में प्रेम का आना एक अद्भुत और अप्रतिम अनुभव होता है, लेकिन दुर्भाग्य से कभी-कभी हम एक ऐसे रिश्ते में उलझ जाते हैं जहां आनंद केवल क्षणिक होता है और दर्द नियति बन जाती है। वो प्रेम नहीं होता, एक भावनात्मक तूफान होता है और हम उसमें घिरते चले जाते हैं। तब भीतर से एक सवाल उठता है, पहले जो था वो क्या था, वो अब कहां गया।